0: रंग तरंग
1: विविध भारती पर कार्यक्रम रंग तरंग के साथ हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।

0: ऋषि पाठक की आवाज में यह पारंपरिक भजन आप सुन रहे थे। अनुमान अंश फिल्म से ऋषि पाठक का ही संगीत। कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।
1: अगर आप देखें कि ब्रेन स्ट्रोक ज्यादा कॉमन है या ब्रेन हेमरेज, 100 में से 85% अभी भी ऐसे हैं जो ब्रेन स्ट्रोक होते हैं, 15% पेशेंट को एक्चुअली ब्रेन हेमरेज होता है।
2: कैसे पहचाने ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण?
1: ब्रेन के राइट साइड में ब्लड नहीं पहुंच पा रहे तो पेशेंट का धीरे धीरे बाया हाथ पैर जो है वो काम करना बंद कर देता है।
2: सिर दर्द कब बन जाता है जिंदगी का दर्द? इन तमाम सवालों से जुड़ी जानकारियां देंगे न्यूरो सर्जन डॉक्टर अजीत मिश्र।
1: ब्रेन का एक ऐसा हिस्सा जो धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू हो गया, तो जहाँ से पैर की नस ब्रेन में शुरू होने वाली है, अगर वो ब्रेन ही आपका श्रिंक होते जा रहे हैं तो उसमें से धीरे धीरे ट्रेमर्स आने लगते हैं।
2: सुनिए सेहतनामा 21 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।

प्यार का पहला खत इस एल्बम से आप सुन रहे थे। जगजीत सिंह की आवाज में उन्हीं का संगीतबद्ध किया ये कलाम जिसे लिखा राजेश रेड्डी ने। कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। आइए अब सुनते हैं कासिम कुरैशी का कलाम भूपेंद्र सिंह की आवाज में और इसे हमने लिया है नशीमन एल्बम से।

0: एक विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे हे।
0: संगीत के साधक।
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों

0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
1: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुक खड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।

गीत गाता चल फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। किशोर कुमार और साथियों की आवाज़ें, रविंद्र जैन के बोल, उन्हीं का संगीत। आज है फिल्मकार ताराचंद बड़जात्या की पुण्यतिथि, तो उनकी फिल्मों के गीत आपको सुनवा रहे हैं यादों की महफिल कार्यक्रम में। आइए सुनते नदिया के पार फिल्म से ये गीत, जसपाल सिंह और हेमलता की आवाजें, रविन्द्र जैन के बोल, उन्हीं का संगीत।

नदिया के पार फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। जसपाल सिंह, हिमलता की आवाजें, रविन्द्र जैन के बोल, उन्हीं का संगीत। कार्यक्रम में वक्त एक छोटे से अंतराल का।

अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल, जिसमें आज फिल्मकार ताराचंद बड़जात्या की पुण्यतिथि पर उनकी फिल्मों के गीत।

मोहम्मद रफी की आवाज में मजरूह सुल्तानपुरी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत आपने सुना दोस्ती फिल्म के इस गीत में। कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

0: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज।
1: अगर आप देखें कि ब्रेन स्ट्रोक ज्यादा कॉमन है या ब्रेन हेमरेज, 100 में से 85% अभी भी ऐसे हैं जो ब्रेन स्ट्रोक होते हैं, 15% पेशेंट को एक्चुअली ब्रेन हेमरेज होता है।
2: कैसे पहचाने ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण?
1: ब्रेन के राइट साइड में ब्लड नहीं पहुंच पा रहे तो पेशेंट का धीरे धीरे बायां हाथ पैर जो है वो काम करना बंद कर देता है।
2: सिर दर्द कब बन जाता है जिंदगी का दर्द? इन तमाम सवालों से जुड़ी जानकारियां देंगे न्यूरो सर्जन डॉक्टर अजीत मिश्र।
1: ब्रेन का एक ऐसा हिस्सा जो धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू हो गया, तो जहाँ से पैर की नस ब्रेन में शुरू होने वाली है, अगर वो ब्रेन ही आपका श्रिंक होते जा रहे हैं तो उसमें से धीरे धीरे ट्रेमर्स आने लगते हैं।
2: सुनिए सेहतनामा 21 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल, जिसमें आज फिल्मकार ताराचंद बड़जात्या को याद कर रहे हैं उनकी पुण्यतिथि पर उन्हीं की फिल्मों के गीतों के जरिए। आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत उपहार फिल्म के इस गीत में।

0: एक विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे हे।
0: संगीत के साधक।
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
1: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन रात।
0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
2: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

आशा भोसले की आवाज में आप सुन रहे थे रविंद्र जैन के बोल। उन्हीं के संगीत से सजा था ये गीत सौदागर फिल्म से। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर यादों की महफिल। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। हेमलता और शैलेंद्र सिंह की आवाजें हैं अखियों के झरोखों से। इस फिल्म से गीत सुनवा रहे हैं संगीत और बोल रविंद्र जैन का।

0: आंखों के झरोखों से। इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, हेमलता और शैलेंद्र सिंह की आवाजें, रविंद्र जैन के बोल, उन्हीं का संगीत।
1: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
2: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहाँ से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
1: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल, जिसमें आज फिल्मकार ताराचंद बरजात्या की फिल्मों से गीत सुनवा रहे हैं।

लिखित चोर फिल्म का गीत आप सुन रहे थे येसुदास और हेमलता की आवाजों में, रविन्द्र जैन के बोल, उन्हीं का संगीत। कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर सुन रहे हैं। आइए सुनते हैं पिया का घर फिल्म से ये गीत किशोर कुमार की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

दुल्हन वही जो पिया मन भाए, फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। येसुदास हेमलता और बंसरी सेन गुप्ता की आवाजें, रविंद्र जैन के बोल, उन्हीं का संगीत। और इसके साथ ही आज का यादों की महफिल कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: जम्बो जेठ जम्बो जेठ लंडन मुंबई प्रवास थेट जगलो वसलो पुन्ना भेट जम्बो जेठ सोई।
1: मराठी संगीत जगत की एक दिग्गज हस्ती अप्पा वढावकर।
0: रात्रंदिन आम्हा युद्धाचा प्रसंग, रात्रंदिन आम्हा युद्धाचा प्रसंग।
1: विविध भारती के स्टूडियो में लेकर आ रहे हैं अपने जीवन की कहानी।
0: जब परीक्षा दे रहा था तो मेरे पिताजी का निधन हो गया और उस टाइम मेरे घर में वसंत देसाई जी मिलने को आए। 72 से 75 तक मैं वसंत देसाई के साथ काम किया।
1: आज के मेहमान 23 सितंबर शाम 4 बजे और 24 सितंबर सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सुरीला सफर, बस कुछ पलों के बाद।
1: जरा नजरों से

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सुरीला सफर लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम एक इबारत या टेक्स्ट पोस्ट करते हैं अपने फेसबुक पेज पर, जिसमें छुपे होते हैं वो शब्द जिनसे गीत सुनवाए जाते हैं कार्यक्रम में। तो आज की इबारत या टेक्स्ट कौन सी है ये आपको पढ़कर सुना देते हैं। हमने लिखा है, आज निगाहें मिली और इशारे हुए, दिल ने कहा वो हमारे हुए, फेरी नजर उसने और टूटा ये दिल, क्यों उस बेवफा के नजारे हुए। एक नन्हा सा सपना आंखों में खिला, पलक झपकते ही हुआ लापता, ढूंढती है अखियां पुकारती है नजर, आंखों आंखों में ही गुम वो सारे हुए। नजरों के किस्से निगाहों की बातें, गली गली ऐसे इशारे हुए, नजरें उठी भी नजरें झुकी भी, नयन तेरे कैसे बेचारे हुए। कभी भरे आंसू कभी प्यार छलका, तो कभी नैना ये सुलगते से अंगारे हुए। तो इनमें से शब्द आपको चूज करना है, चुनना है और बताना है कि कौन कौन से शब्द ऐसे हो सकते हैं जिनसे आज के इस कार्यक्रम में गीत सुनवाए जाएंगे। और आपने तो शुरुआत कर ही दी है कमेंट्स के जरिए। हमारे साथी लिखते हैं कि आज की इबारत आंखें नैन निगाहें इन शब्दों से के गीतों से सजाई गई है। किसी से प्यार में आंखें ही अक्सर वो सब कुछ बयां कर देती है जो जुबान से कहना मुमकिन होता है मुमकिन नहीं होता है, चाहे वो मिलन की खुशी हो या जुदाई का दर्द। आंखें हमारी गहरी भावनाओं की आईना होती हैं, क्योंकि इन पर हमारा सीधा नियंत्रण नहीं होता है। किसी से जुदाई के वक्त सबसे पहले भारी होती हैं, क्योंकि कभी कभी नैनों से आंसू नहीं गिरते तो भी नैनों का सूनापन और दिल के खालीपन को ये आसानी से जाहिर कर देती हैं। तो बहुत ही अच्छी बात आपने लिखी, और भी हमारे साथियों ने बहुत सी बातें लिखी हैं, वो आपको बताएंगे ही। लेकिन आप हमें ये बताइए कि आपको किन की आंखों का इशारा याद है और आपको आंखों की भाषा कितनी समझ आती है, और सबसे ज्यादा नजरों से बातें कब की जाती हैं। तो ये बातें आप बताइए, और कोई अगर किस्सा हो जिसमें आपने कुछ इशारा किया हो किसी को और उसने समझ लिया हो कुछ गलत, तो ऐसे मजाहिया किस्से भी आप हमसे साझा कर सकते हैं। और फिलहाल हम आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का पहला गीत, और इस गीत को किस फिल्म से लिया है हमें बताइए।

आईडी फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी और गीता दत्त की आवाज में। फिल्म का नाम हमने आपसे पूछा था और आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि वो गद्यांश में नयन नयन निगाहें पलक आंखों की बात होंगी। वहीं हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि आज की भारत एक सुंदर कविता के रूप में जो प्रेम के शुरुआती आकर्षण, उसकी मासूमियत और फिर अचानक मिले धोखे या जुदाई के दर्द का बहुत ही मार्मिक और सजीव चित्रण करती है। इसमें आंखों और नजरों के माध्यम से बयां होने वाले एहसासों की गहराई को बखूबी उकेरा गया है। प्रेम की कोमलता और उसकी बिछोह की कसक का बहुत ही संतुलित और काव्यात्मक मेल देखने मिलता है। वहीं हमारे साथी का कहना है कि कभी पलक झपकते ही कोई ख्वाब सा सामने से गुजर जाता है और आंखें उसे पकड़ने को फिर उसी दिशा में ठहर जाती है। निगाहें भी कितनी अजीब जुबान होती है, फिर बिना लफ्जों के जाने कितनी दास्तां कह जाती है। कभी नैनों की झलक से प्रेम का इजहार हो जाता है तो कभी पलकें झुकाकर दिल अपनी राज छिपा लेता है। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, न मनचाहा होता है। कुदरत सबको नवाजती है प्यार प्रेम और खुशी से, सब्र जरूरी है, ऐसा इनका कहना है। हमारे एक और साथी का कहना है कि आंखों की भी अपनी एक जुबान होती है, बिना लफ्जों के कह देने की। कभी एक नजर में कोई अपना सा लगने लगता है, कभी वही नजर लौट जाए तो दिल में एक खाली सी जगह रह जाती है। आंखों में खिले छोटे से ख्वाब भी अजीब होते हैं, पलक झपकते ही बिखर जाते हैं, मगर उनकी किरचें देर तक यादों में चमकती रहती है। इश्क भी आंखों का ही कोई पुराना किस्सा है, जो कहा कम जाता है महसूस ज्यादा होता है। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि सभी कार्यक्रम उन्हें अच्छे लगते हैं और वो देश देश भर में सारी जगह जब ये कार्यक्रम जाते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। आपका बहुत शुक्रिया। तो हमारे एक और साथी का कहना है कि आज बातें नजरों की आंखों की है, पर यदि आंखें ही नम हो या आंसुओं से भरी हो तो कोई कैसे लिखे क्या लिखे। किसी ने आंखों में आंसू दिए, हम चाहते तो बदले में उसकी आंखें भी नम कर सकते थे, मगर दिल ने कहा छोड़ दो। हर दर्द का जवाब दर्द से देना जरूरी नहीं होता। हमने उसे माफ किया, कोई सजा नहीं दी, बस दिल से एक दुआ निकली, तुम जहां भी रहो खुश रहो और कभी किसी के दिल को इतना मत दुखाना जितना मेरा दुखा है। दिल में दर्द हो फिर भी किसी के लिए नफरत ना हो। भाई हम तो यही कहेंगे कि आपकी आंखों में जो आंसू आए हैं वो जल्द से जल्द दूर हो। और ये गीत सुनिए, शायद इस गीत से आपको कुछ आराम हो। हमें बताइए किस फिल्म का ये गीत है।

यहूदी फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और गीता दत्त की आवाजें। हमारे साथियों ने बिल्कुल सही जवाब दिया, हालांकि कुछ साथी कह रहे हैं कि अनसुना सा गीत है। वहीं हमारे एक और साथी ने कहा कि आज सोच रहा था कमेंट है ना करूं, फिर दिल ने नहीं माना क्योंकि आप हम जैसों के कमेंट की ओर ध्यान ही नहीं देते। भाई ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, जो भी कमेंट सामने आते हैं हम उन्हें जरूर पढ़ते हैं। और चलिए कोई बात नहीं, गुस्से वाला ही कमेंट सही, नाराजगी वाला कमेंट ही सही शामिल तो हुआ। हमारे एक साथी कह रहे कि नजरें मिली तो लगा जिंदगी मिल गई, धड़कनों को जैसे एक नई साज मिल गई, पर वो मुस्कुराहट महज एक छलावा थी, वादों की कश्ती बीच भंवर में खो गई, एक आस जगी थी सूने दिल में जो पल भर में आंसुओं की धार में बह गई, खोए हुए उस साए को तलाशती ये राहें जहां कभी चाहतों के हंसी सिलसिले हुए, निगाहों के खेल भी बड़े अजीब होते हैं, कभी पास लाते हैं तो कभी दूर कर जाते हैं, वो जो पलकों को उठाकर मुस्कुराना तेरा, अब वही यादें सीने में तीर सी चुभती हैं, कभी इन आंखों में वफा का नूर था, आज वही नैना तन्हाई के साए में अंगारे हुए। भाई क्या बात है। वही हमारे एक और साथी का कहना है कि शब्दों से बनने वाले गीत यदि लिखे जाएं तो पहले तो शब्द ही इतने हैं कि उन्हें गिनने और गिनकर लिखने में कम से कम आधे घंटे में पूरे हो जाएं तो गनीमत है, फिर उन पर गीतों के चयन प्रक्रिया में तो यदि 4 से 6 घंटे लग जाएं तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। भाई पूरे के पूरे फिल्मों के गीतों को खंगालते हुए चयन करना कोई तो 1-2 घंटे का काम है नहीं, फिर कार्यक्रम तो केवल 1 घंटे का है। फिर भी भाई कोई बात नहीं, आप अपनी पसंद के गीत लिख सकते हैं।

महेश, और यही तो इस कार्यक्रम की खूबसूरती है कि आपकी पसंद के गीत और हमारे गीत कितने मिलते हैं यही तो पता चलेगा। और शब्द हो सकता है कि आप कोई नए शब्द चुन ले उस इबारत में से जो हमें भी नजर आए हों, और ये बातें ही इस कार्यक्रम को खूबसूरत बनाती है। तो अपनी जो प्रक्रिया है आप जारी रखें, हमारी प्रक्रिया हम जारी रखते हैं। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे क्या देखें। और हमारे एक और साथी कहती हैं कि रिश्ता चाहे कोई भी हो, मोहब्बत का, प्यार या प्रेम का या जीवन का, कोई भी गहरा भाव वो अक्सर शब्दों का मोहताज नहीं होता और आंखों से ही बयां हो जाता है। आंखें दिल का आईना होती है, जब जुबान खामोश होती है तब भी आंखें सब कुछ कह जाती हैं। शब्दों में झूठ छुपाया जा सकता है लेकिन आंखों की चमक या उसकी नमी कभी झूठ नहीं बोलती। प्रेम का असली स्वाद और सुकून किसी की सिर्फ एक नजर से महसूस किया जा सकता है। बिना कुछ कहे सिर्फ एक दूसरे को देखकर पूरी बात समझ लेना सबसे खूबसूरत रिश्ता है। वहीं हमारे एक साथी का कहना है कि हमको हमारी गणित की अध्यापिका का खतरनाक तरीके से आंखें निकालकर देखने का अनुभव आज तक याद है। उनकी आंखों का एक इशारा सारी क्लास को पल भर में ही खामोश करवा देता था। भाई, ऐसे ही आपको याद आ रही है, किनकी आंखों का इशारा याद आ रहा है? क्या कोई बेहतरीन अच्छा किस्सा भी हो सकता है, कुछ खूबसूरत किस्सा हो सकता है, कुछ ये डराने वाला किस्सा हो सकता है। अक्सर तो जब घर में मेहमान आते हैं तो भी आंखों का इशारा बहुत किया जाता है। कुछ ऐसा अगर आपको याद आए तो भी आप हमें बता सकते हैं। फिलहाल याद करके बताइए कि जो गीत सुनवा रहे हैं किस फिल्म का वो गीत है और लिखा किसने है।

0: पहुंच के इस मंजिल पे लौटना अब तो है दुश्वार, जीना भी मुश्किल मरना भी मुश्किल।
1: प्रोफेसर फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। बिल्कुल सही जवाब हमारे साथियों ने

0: नहीं पड़ता। तो शायद जवाब भी आपको साथ ही साथ आपने दिया है। हालांकि कमेंट्स की संख्या इतनी ज्यादा होती है कि कभी कभी कुछ कमेंट्स उनमें गुम हो जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर हमने आपकी बात पढ़ी हो तो हम जरूर उसे शामिल कर लेते हैं। वहीं हमारे एक और साथी का कहना है कि जब आंखों में आंसू हो और दिल जानता हो कि इन आंसुओं की वजह कौन है, फिर भी दिल उसी के लिए सजा नहीं दुआ मांगे, तो समझिए वहां नफरत से कहीं ज्यादा दोस्ती और इंसानियत बची हुई है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि आज नयन निगाहें आंख लोचन चक्षु पर बातें होंगी। आंखों का एक गुणधर्म है, वो अधिक खुशी और गम दोनों पर छलक जाती हैं। वाह क्या बात आपने कही। और एक खेल हुआ करता था जो बचपन में हम खेला करते थे, जिसमें एक दूसरे से नजरें मिलाकर रखे रहना होता था बहुत लंबे समय तक, और जो पहले पलकें झपकाता था वो हार जाता था। तो क्या आपने वो खेल खेला है और क्या आप उसमें जीता करते थे या नहीं, ये हमें बताइए। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि हम इस गाने को जब सुनते हैं, जरा नजरों से कह दो जी निशाना चूक न जाए, तो अजीब सी उधेड़बुन में होता हूं कि नजरों का निशाना भी कहीं चूक जाता है। ये तो ऐसा कमाल का हथियार है कि बिना किसी रसायन बिना टेक्नोलॉजी का ऐसा बम है कि जिस पर गिरता है हाय करके बस रह जाता है। आमना सामना हुआ कि दुश्मन चारों खाने चित, वो दाएं बाएं भाग भी नहीं सकता, खुद ही शिकार के पास पहुंच जाता है और समर्पित भाव से निवेदन करने लगता है कि दिल जिगर के साथ मेरी सारी संपत्ति सब तुम्हारा है, बस हमारी जान बख्श दो। ये तो बड़ी अच्छी बात आपने मजे के तौर पर लिख दी है, लेकिन कभी कभी तो निशाना चूक भी सकता है। तो क्या कभी निशाना चूका आपका, ये हमें बताइए। और हमारे एक साथी ने बड़ी मजाहिया बात लिखी कि आंखों ही आंखों में मोबाइल बस गया, देखते ही देखते चश्मा लग गया। तो क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ, हमें सारी बातें आप बताइए। और कार्यक्रम ही कुछ ऐसा है जिसमें आपकी बातें आप हमें बता सकते हैं, जो कार्यक्रम में शामिल भी हो सकती हैं। और कार्यक्रम में आप शामिल हो रहा है एक ऐसा गीत जिसके बारे में आप हमें बताइए कि किस फिल्म का गीत है।
1: झुके जो तेरे नैना

कंगन फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे महेंद्र कपूर और उषा खन्ना की आवाजों में। और हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि जब दो दिल एक दूसरे की धड़कन सुनने को बेताब हों तो दिल की बातें बताए बिना नहीं रह सकते, पर परिस्थिति बस कहा भी ना जाए तभी आंखें एक दूसरे से बात करती हैं, कोई शोर नहीं करती पर चोर जरूर करती हैं। वही हमारे एक साथी का कहना है कि जब मेरा बेटा छोटा था तो किसी के सामने कुछ भी बोल देता था, और जब मैं आंख से इशारा करती कि चुप रहे तो सबके सामने बोलता था कि मम्मा आंख से इशारा करती हैं, तो सब हंसा करते थे। वही हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि मैं अब बेनी बुनना सीख रही हूं, 35 टाके की नातू के लिए इधर उधर ध्यान गया तो कांटा चूक गया। ऐसा होता है, मतलब उसमें नजर ध्यान रखना जरूरी है। वही हमारे एक साथी कह रहे हैं कि सिर्फ मैं ही नहीं, दुनिया के सभी पति अपनी पत्नी की आंखों के इशारे पर नाचते हैं, यही सत्य है। भाई कितना सत्य है तो सब पति पत्नी ही बता सकते हैं। वही हमारे एक और साथी का कहना है, वो आंखों के बारे में कह रहे हैं कि निगाहों से शुरू हुआ जो सफर वो इशारों में खो गया, कभी हंसाया इन आंखों ने तो कभी अशकों में भिगो दिया, एक नन्हा सा सपना जो सजाया था पलकों पर, न जाने वो पलक झपकते ही कहां गुम हो गया। तो हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि नजर भी अजीब शह है, दो की चार हो जाए तो प्यार कहलाती है, झुकी झुकी नजर हो तो प्यार का इजहार होती है, कुछ लोग बॉस की नजर में चढ़ने के लिए दिन को रात और रात को दिन कहने से नहीं चूकते, दूसरी ओर मेहनती आदमी देर से ही सही मगर नजर जरूर आता है, उधार लेने वाला नजरें चुराता है और वसूलने वाला उसे खा जाने वाली नजर से देखता है। भाई क्या बातें कही आपने। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि जब किसी से नजर मिलती है तो अक्सर बिना शब्दों के ही बहुत कुछ कह जाती है, आंखों में खिले छोटे से सपने, नजरों के इशारे और दिल में उठते प्यार की नजरें, प्यार की लहरें मन को एक अनोखी खुशी देती है, कभी नजरें उठती हैं तो प्रेम झलकता है, कभी झुकती हैं तो शर्म और अपनापन, और कभी आंसुओं में छिपा दर्द सामने आ जाता है, यही नजरों और नैनों के अनकही किस्से प्रेम को और भी खूबसूरत बना देते हैं। वैसे नजरों के या कहें आंखों के रंगों के ऊपर भी कहा जाता है अलग अलग भावों के लिए, कि जब कोई गुस्सा होता है तो आंखें लाल कर देता है और इस तरह की बातें भी होती हैं। क्या आप भी ऐसे कुछ किस्से या बातें जानते हैं या कुछ कहावतें भी आप हमें बता सकते हैं और साथ ही बता सकते हैं कि किस फिल्म का गीत हम आपको सुनवा रहे हैं।

झुक गया आसमान फिल्म का गीत आप सुन रहे थे और फिल्म का नाम हमने आपसे पूछा था, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। हमारे एक साथी कहने कि मैं तो सोचती हूँ घर की शांति बनाए रखने के लिए आंखों से ही बातें हों तो दुनिया एक शांतिमय जगह हो जाए। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि झुके तो तेरे नैना गीत बहुत दिनों के बाद सुना, उन्हें अच्छा लगा। वही हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि आंखें नेमत हैं और शायद सबसे कीमती चीज जो हमारी है, जो हैं वो हमारी दो आंखें हैं। ये आंखें हैं जो हर भाषा को पढ़ने का हुनर रखती हैं। जीवन के सबसे कठिन पलों में अपने सबसे करीबी साथी को आंखों ही आंखों में सहारा देकर देखना। जीवन में जिसने आंखों की मूक भाषा पढ़ ली, समझ लो उसने आधी दुनिया का सच समझ लिया। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि जहां शब्द अधूरे रह जाते हैं, नैनों के इशारे काफी होते हैं। हृदय की अनकही भावना बिना बोले नजर ही कह देती है। आंखों की हल्की सी हरकत, पलकों का उठना, शर्मा कर झुक जाना, यही प्रेम की पहली और सच्ची लिपि है, जिन्हें बिना छुए सिर्फ रूह महसूस करती है। वहीं हमारे एक साथी ने कहा कि आंखें मां की ममता भी मां की ममता भरी नजर के सामने सब फेल हैं। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि पारिवारिक जीवन में पिता की आंखों की भूमिका ही प्रभाव डालती है। बच्चों और अन्य पर अनुशासन का सर्वश्रेष्ठ माध्यम आंख ही होती है। आंखों के इशारे से ही प्यार झलकता है, सहम भी जाता है और दुखी भी होता है। वहीं हमारे एक साथी का कहना है कि मुझे कई बार स्कूल कॉलेज में कंफ्यूजन होता था कि स्कूल के टीचर मुझसे प्रश्न पूछ रही हैं या पीछे वाले से। ये शायद टीचर जिस तरह से देखा करती होंगी उससे इन्हें ऐसा लगता होगा। हमारे एक और साथी ने एक बड़ा ही मजेदार किस्सा लिखा कि सालों पहले मैं मेरे पति का हाथ बटाने शॉप पे जाया करती थी। एक बार एक सेल्समैन आया जिनसे मेरे पति मिलना नहीं चाहते थे। उसने मेरे पति का नाम लेकर पूछा कि भाई साहब नहीं है, कब मिलेंगे। मैंने तिरछी नजर से उनकी तरफ देखा, उन्होंने आंखों के इशारे से मुझे मना किया और मैंने सेल्समैन से कहा कि भाई साहब 2 दिन बाद मिलेंगे। 8 दिन बाद वो ही सेल्समैन मुझे मिला तो हंसकर पूछने लगा कि आप इतनी जल्दी कैसे भाई साहब के इशारे को पहचान गई, यानी कि उन्होंने देख तो लिया था लेकिन इस बात का मान रखा। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि कभी कभी हमें नजरों की भाषा समझ नहीं आती पर नजर लग जाती है, खासकर छोटे बच्चों को, नई ब्याहता बेटी बहू को ऐसा लोग कहते हैं, होता भी है। इसलिए हर माँ अपने बच्चों को काजल का टीका लगाती है नजर से बचाने के लिए। भाई ये भी माँ की ममता का ही एक रूप है, लेकिन कभी कभी जब माँ गुस्से में आती है तो उनकी नजरें देखकर बच्चे का जो हाल होता है वो तो वही समझ सकता है। क्या कैसा ऐसा कभी आपके साथ कुछ हुआ हमें बताइए। और हम आपको सुनवा रहे हैं ये गीत जिसमें आपको पहचानना है कि किस फिल्म का गीत है।

तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया फिल्म का गीत हमने आपको सुनवाया और हमारे साथियों ने कहा कि नई फिल्म के गीत है, हमने हाथ खड़े कर लिए हैं। कोई बात नहीं, हमारे एक साथी कह रहे हैं कि आंखें कभी प्यार छलकाती है, कभी आंसुओं से भर जाती हैं, तो कभी दर्द और बेबसी में सुलगते से अंगारे बन जाती हैं। ये इस बात का प्रतीक है कि जब दिल टूटता है तो सबसे ज्यादा सजा आंखें ही भुगतती हैं, जो हर एहसास को चुपचाप सहती हैं। निसंदेह ये कविता केवल आंखों के मेल मिलाप की नहीं, बल्कि उस टूटे हुए विश्वास की कहानी है जो बिना कुछ कहे सब कुछ कह जाती है। वहीं हमारे एक साथी का कहना है, कभी जो निगाहें दिल का हाल मुस्कुराकर सुनाती थीं, आज वो पलकें आंसुओं का बोझ छुपाने में थक जाती हैं। वो नैनों की भाषा अब बस खामोशी से रोती है, जब मोहब्बत अधूरी हो तो रातें आंखों में ही कटती हैं। और एक और साथी का कहना है कि कभी कभी दिल की बात कहने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं होती, बस एक नजर ही काफी होती है, और जब निगाहें मिलती हैं तो जैसे अनकहे इशारों में ही मोहब्बत की कहानी लिख दी जाती है। आंखों में सजते हैं छोटे छोटे सपने, फिर इंतजार करती पलकें और कभी नैनों में प्यार छलकता है। कभी यही नजरें झुककर शर्माती हैं तो कभी दूर होकर यादों में बस जाती हैं। इनमें कभी विरह के आंसू उतर जाते हैं और कभी वही आंखें शिकायत बनकर सवाल करने लगते हैं। वही तो आंखों की खूबसूरत भाषा है जिसे दिल पढ़ लेता है, अगर उसे सुरों में ढाल दें तो एक सुरीला मधुर गीत बन जाता है। तो ये तो बात हो गई, एक सुरीला मधुर गीत आपका इंतजार भी कर रहा है इस कार्यक्रम में, और आपकी बातें तो आप भेज ही रही हैं, लेकिन हमें ये बताइए कि क्या आपने कभी ऐसा सोचा कि आप नजरों से या इशारों से कोई बात किसी को कहें लेकिन वो व्यक्ति आपकी बातें समझता ही नहीं या समझती ही नहीं, तो क्या करते हैं आप ऐसे मामले में? और हमें पूरा यकीन है कि जो गीत अब आपको सुनवा रहे हैं आपको पता होगा किस फिल्म का ये गीत है, और नायक का नाम बताएंगे तो और भी अच्छा होगा।

बाजीगर फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, शाहरुख खान इसमें नायक हैं और आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि दर्द दिल में होता है और आंखें बरसती हैं और अगर खुशी होती है तो आंखों में ही चमक पहले होती है। वहीं हमारे एक साथी का कहना है कि इस समय मेरी नजरें विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के ऑफिशियल फेसबुक के पेज पर सुरीला सफर की पोस्ट पर है और कान रेडियो की तरफ जो सुरीला सफर प्रोग्राम सुन रहे हैं और वो उसका जवाब देने के लिए इस तरह से बिल्कुल लगे हुए हैं, ऐसा कहना होगा। हमारे एक और साथी हैं, वो कहते हैं कि जब देखूं गुलाबी लाल पीली अंखियां, ये बात तो एक डॉक्टर किसी मरीज से पूछते हैं, पता नहीं कौन से फिल्म का गीत है। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि निगाहें कभी खामोश नहीं होती, बिन कहे भी बहुत कुछ कह जाती हैं। कभी प्यार की रोशनी बनती है, कभी दर्द की कहानी कह जाती है। किसी की एक निगाह में अपनापन मिलता है तो किसी की एक नजर में पूरा संसार। निगाहें दिल का आईना होती हैं, जो छुपा हो दिल में कर देती हैं इजहार। वहीं हमारे एक साथी ने एक सवाल पूछा है, बड़ा ही गंभीर सवाल। उनका कहना है कि अगर किसी की नजर लग जाए तो नजर उतारने के लिए क्या करें। भाई हमें तो इसके बारे में यही पता है कि अगर किसी की नजर लग जाए तो आप भी उन्हें नजर लगा दें। वैसे हमारे साथी बताएंगे कि वो क्या कर सकते हैं। और हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि जब आंखों के कलर की बात हो गई, रंगों की बात हो गई, तो कई रंग आंखों के हमने देखे हैं और उन पर गीत भी बने हैं, तो ऐसा कोई गीत आपको याद आता है और कौन कौन से रंगों की आंखें आपने देखी हैं हमें बता सकते हैं। तब तक हम आपको सुनवाते हैं ये गीत। बताइए किस फिल्म का गीत किसने लिखा है।

0: आवारा फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। असर जयपुरी ने इसे लिखा, शंकर जयकिशन का संगीत। लता मंगेशकर की आवाज में आपने ये गीत सुना। हमारे एक साथी कह रहे कि मैं तो इकलौता बेटा था, तो माँ की आंख का तारा था, कभी आंखें तरेर कर उन्होंने हमें देखा ही नहीं। ये हमें मतलब देखा हो ऐसा हमें याद नहीं। हाँ, पिताजी ने गुस्से में पढ़ाई को लेकर आंखें लाल पीली की तो माँ ने हमेशा बचाव किया। उनकी नजरें रास्ते पर टिकी रहती जब मैं स्कूल जा रहा होता या आ रहा होता। हमारे मास्टर ने स्कूल में एक बार दो डंडे मारे थे तो माँ मास्टर को खा जाने वाली नजरों से देखकर उन्हें ऐसी फटकार लगाई थी कि वे आंखें ही नहीं मिला पा रहे थे। सारी क्लास की बच्चों की नजरें मेरी माँ पर थी। कितनी अच्छी तरह से इन्होंने अपनी पूरी बातें नजरों, आंखों और इन बातों पर लिखा। हमारी कौर साथी कह रहे हैं कि दर्द दिल में होता है और आंखें बरसती हैं, खुशी हो तो आंखों में चमक पहले होती है। हमारी कौर साथी हैं, उन्होंने अंग्रेजी में अपना कमेंट किया है जिसे हम हिंदी में कहने वाले हैं। हम वो कह रहे हैं कि आंखें सिर्फ हमारे चेहरे पर ही नहीं होती, बल्कि आंखें मानव शरीर में हर जगह होती। हमारे कान, हमारी जीभ, हमारे सूंघने की शक्ति, हमारे छूने की शक्ति, स्पर्श की जो सारी चीजें होती हैं, वो सारी जो इंद्रियां होती हैं, वो उन सभी की अपनी अपनी एक आंखें होती हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चमकदार और सबसे ज्यादा नजर आने वाली ये जो आंखें हैं हमारी, वो हमारे दिल की आंखें होती हैं। माफ कीजिएगा। और उनका कहना है कि इन आंखों से हम बहुत सी चीजों को देख सकते हैं, लेकिन वो चीजें दूसरे लोग नहीं देख सकते। वहीं हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि हेलो, फरमाइश की रिकॉर्डिंग चालू है क्या? हमारा नंबर नहीं लगता। भाई, हमारी तो यही उम्मीद है, यही हमारी शुभकामनाएं कि आपका नंबर भी जरूर लगेगा। लेकिन अभी नंबर आ गया है गीत का, तो दूसरा गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। और इस गीत को किस अभिनेता पर फिल्माया गया हमें बताइए और फिल्म का नाम भी बताइए।
1: निगाहें मस्ताना देख समा है।

0: सितना।
1: पेइंग गेस्ट फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे और देव आनंद इसमें नजर आते हैं। बिल्कुल सही बात, आपने सही जवाब दिया। हमारे साथी कह रहे हैं आंखों पर मुझे कुछ गीत याद हैं, जैसे गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, फिर नीली नीली आंखों के दिल पर तीर चल गए और जादू भरी आंखों वाली सुनो। वहीं हमारे साथी कह रहे हैं कि मेरे नसीब में आंखें मिलाना लिखा ही नहीं था, बच्चे भी मुझसे नहीं डरते क्योंकि मैं शासन नहीं करना चाहती। और हमारे साथी कह रहे हैं कि आंखें मिलाने का खेल मैंने खेला जो हमने पूछा था और हमेशा मुझे हार मिली है। वहीं हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि मैं अपनी पत्नी की आंखों के इशारे पर नहीं नाच सकता और ये बात मेरे सभी दोस्त जानते हैं। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि बचपन में जब कोई मेहमान आता था तब हम सारे बच्चे वहां घूमते टहलते रहते थे क्योंकि टेबल पर सजाई गई भोज्य सामग्रियां हमें खूब लुभाती थी कि शायद हमें भी कुछ मिल जाए, लेकिन फिर माँ और ताई जी आंखों से इशारा करती कि चलो भागो यहां से। जब उनका कोई प्रभाव हम पर नहीं पड़ता तो सीधे साफ शब्दों में बोला जाता कि जाओ बाहर जाकर खेलो। वहीं हमारे साथी कह रहे हैं आंखों पर मुझे कुछ गीत याद हैं, जैसे कि गुलाबी आंखें जो तेरी देखी या फिर नीली नीली आंखों के दिल पर तीर चल गए और जादू भरी आंखों वाली सुनो। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि वैसे तो आंखें काली भूरी सुनहरी नीली देखी है, पर फिल्मी गीतों में गुलाबी आंखें और कत्थई आंखों वाली लड़कियां भी देखी हैं। हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि गुलाबी आंखें छोड़कर सभी आंखें हमने देखी होंगी। और एक साथी कह रहे हैं कि पड़ोस में जब कोई मेहमान आता था तो अपनी बेटियों को आंखों के इशारे से समझा देती थी कि किस प्रकार की चाय और नाश्ता देना होता है। आंखों के रंग से मुझे एक बात याद आई, हमारे एक साथी ने कहा कि लंकापति रावण की आंखें हमेशा लाल हुआ करती थी, भाई इसके बारे में हमें तो कुछ नहीं पता। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि बांके बिहारी जी का वृंदावन में पर्दा जब बार बार बंद और खुलता है ऐसा मानते कि ये छलियां हैं, कहीं किसी से अगर उनकी आंखें मिल गई तो उसके साथ ही चल देते हैं। तो चलिए हम भी चल देते हैं इशारों इशारों में बातें करने, क्योंकि कार्यक्रम का अंतिम गीत पहुंच चुका है आपके सामने और अब आप बताइए कि किस फिल्म का ये गीत है।

कश्मीर की कली फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे और वक्त ने इशारा कर दिया है कि कार्यक्रम से जाने का वक्त आ गया है। तो बस आज के कार्यक्रम में इतना ही। विविध भारती का सुरीला सफर जारी रहेगा।

में की कली फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे और वक्त ने इशारा कर दिया है कि कार्यक्रम से जाने का वक्त आ गया है। तो बस आज के कार्यक्रम में

0: सखी सहेली हमारे सभी सुनने वालों को नमस्कार। चंचल वर्मा का और हम स्वागत करते हैं सखी सहेली कार्यक्रम में हमारे सभी श्रोताओं का, सखियों का, सखाओं का। और नमस्कार नेहा आपको भी।
1: नमस्कार चंचल जी आपको और सभी सुनने वालों को भी। नेहा शर्मा का नमस्कार।
0: तो आज इस मंच पर बहुत दिन बाद हम मिले हैं और बताते हैं कि आज किन विषयों पर हम मिलजुल कर बात करने वाले हैं अपने सुनने वालों के साथ।
1: हाँ, ये आपने सही कह दिया कि सुनने वालों के साथ किन विषयों पर बात करने वाले, क्योंकि हम तो आपस में बहुत सारे विषयों पर बात करने वाले हैं। लेकिन आज कथा सुधा में बड़े भाई साहब, जो मुंशी प्रेमचंद की कहानी है, उसका दूसरा भाग हम सुनने वाले हैं।
0: तो बिल्कुल हम इस बात को नहीं भूले हैं कि पहला भाग सुन चुके हैं सुनने वाले और दूसरा भाग सुनेंगे। तो भूलने से मुझे याद आया कि भूलने की जो धीरे धीरे शुरुआत होती है, आगे चलकर ये एक बीमारी में भी तब्दील हो सकती है। तो इसके शुरुआती लक्षण जब हो तभी से पहचान लेना चाहिए, यानी कि हम बात कर रहे हैं अल्जाइमर या डिमेंशिया, इस तरह की बीमारियों की। और आज विश्व अल्जाइमर दिवस है, इस पर कुछ बातचीत होगी।
1: बिल्कुल, और अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस भी है, तो इस पर भी हम बात करने वाले हैं। और मन में शांति बनी रहती जब अच्छा खाना खाने मिले, इसलिए प्रादेशिक व्यंजनों में आज हम लाए हैं कश्मीरी व्यंजन हाक साग और ल्योदूर चमन।
0: तो ये हाक साग जो है ना, कुछ कुछ पालक से मिलता जुलता साग होता है, लेकिन बनाने की विधि सबकी थोड़ी अलग होती है। तो हमारे श्रोता वो हमें भेज रहे हैं इसकी रेसिपीज, वो हम बाद में सुनेंगे और पढ़ेंगे इसे। लेकिन पहले गीत सुन लेते हैं।
1: हाँ।

0: बहुत सुंदर गाना था ना। और बहुत दिन बाद जब ऐसा गाना सुनते हैं ना तो पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। बहुत दिन पहले गाना मैंने सुना था और कहते ना कि हम भूले नहीं इस गाने को
1: जी।
0: और आज याद आई तो हमने लगा दिया।
1: तो बहुत ही अच्छा काम किया आपने, हमें भी याद दिला दिया जो हम तो भूल ही चुके थे इस गाने को, या कहें कि हमें तो पता नहीं था इसके बारे में।
0: और क्या होता है जब कोई चीज किश्तों में सुनते हैं ना, इनकी एक भाग सुना ना सुना दूसरा, तो वो अधूरापन सा रह जाता है। इसी तरह से कोई कहानी है, आधी सुन ली हो आधी ना सुने, तो वो बड़ी उत्सुकता रहती है जानने की कि आगे क्या होगा। तो कथा सुधा में जिन्होंने ये कहानी पहले सुनी है, बड़े भाई साहब पहला भाग, तो उन्हें उत्सुकता है इसका दूसरा भाग सुनने की। तो देर नहीं लगाते हैं, सुनवा देते हैं कहानी
1: जी।
2: कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत

0: बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
1: कथा सुधा में आइए आज सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी बड़े भाई साहब। आज सुनते हैं इस कहानी का दूसरा भाग। पिछले भाग में आपने सुना,
2: अब मुझे अपने ऊपर कुछ अभिमान हुआ और आत्माभिमान भी बढ़ा। भाई साहब का वो रोब मुझ पर न रहा। आजादी से खेल कूद में शरीक होने लगा। दिल मजबूत था। अगर उन्होंने फिर मेरी फजीहत की तो साफ कह दूंगा, आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया। मैं तो खेलते कूदते दर्जे में अव्वल आ गया। जवाब से ये हेकड़ी जताने का साहस न होने पर भी मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर होता था कि भाई साहब का वो आतंक अब मुझ पर नहीं है। भाई साहब ने इसे भांप लिया। उनकी ससहमत बुद्धि बड़ी तीव्र थी और एक दिन जब मैं भोर का सारा समय गुल्ली डंडे की भेंट करके ठीक भोजन के समय लौटा तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली और मुझ पर टूट पड़े।
3: देखता हूँ इस साल पास हो गए और दर्जे में अव्वल आ गए तो तुम्हें दिमाग हो गया, मगर भाईजान घमंड तो बड़े बड़ों का नहीं रहा, तुम्हारी क्या हस्ती है। महज इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज नहीं, असल चीज है बुद्धि का विकास। जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो। मेरे दर्जे में आओगे लाला तो ये सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे, तब आटे दाल का भाव मालूम होगा। इस दर्जे में अव्वल आ गए हो तो जमीन पर पांव नहीं रखते, इसलिए मेरा कहना मानिए, लाख फेल हो गया हूँ लेकिन तुमसे बड़ा हूँ। संसार का मुझे तुमसे ज्यादा अनुभव है, जो कुछ कहता हूँ उसे गिरह बांधिए, नहीं पछताएंगे।
2: स्कूल का समय निकट था, नहीं ईश्वर जाने ये उपदेश माला कब समाप्त होती। भोजन आज मुझे निस्वाद सा लग रहा था। जब पास होने पर भी ये तिरस्कार हो रहा है तो फेल हो जाने पर तो शायद प्राण ही ले लिए जाएं। भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र खींचा था उसने मुझे भयभीत कर दिया। कैसे स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा, यही ताज्जुब है।
1: आइए अब सुनते हैं आगे की कहानी।
2: लेकिन इतने तिरस्कार पर भी पुस्तकों में मेरी अरुचि ज्यों की त्यों बनी रही। खेल कूद का कोई अवसर हाथ से न जाने देता। पढ़ता भी था मगर बहुत कम, बस इतना कि रोज का टास्क पूरा हो जाए और दर्जे में जलील ना होना पड़े। अपने ऊपर जो विश्वास पैदा हुआ था वो फिर से लुप्त हो गया और फिर चोरों का सा जीवन कटने लगा। फिर सालाना इम्तिहान हुआ और कुछ ऐसा संयोग हुआ कि मैं फिर से पास हो गया और भाई साहब फिर फेल हो गए। मैंने बहुत मेहनत न की पर न जाने कैसे दर्जे में अव्वल आ गया। मुझे खुद अचरज हुआ। भाई साहब ने प्राणांतक परिश्रम किया था, कोर्स का एक एक शब्द चाट गए थे। 10 बजे रात तक इधर, 4 बजे भोर से उभर, 6 से 9:30 तक स्कूल जाने के पहले मुद्रा कांतिहीन हो गई थी, मगर बेचारे फेल हो गए। मुझे उन पर दया आती थी। नतीजा सुनाया गया तो वो रो पड़े और मैं भी रोने लगा। अपने पास होने वाली खुशी आधी हो गई। मैं भी फेल हो गया होता तो भाई साहब को इतना दुख ना होता, लेकिन विधि की बात कौन डाले। मैं और भाई साहब के बीच में अब केवल एक दर्जे का अंतर और रह गया। मेरे मन में एक कुटिल भावना उदय हुई कि कहीं भाई साहब एक साल और फेल हो जाएं तो मैं उनके बराबर हो जाऊं, फिर वो किस आधार पर मेरी फजीहत कर सकेंगे। लेकिन मैंने इस कमीने विचार को दिल से बलपूर्वक निकाल दिया। आखिर वो मेरे हित के विचार से ही तो डांटते हैं। मुझे उस समय अप्रिय लगता है अवश्य, मगर ये शायद उनके उपदेशों का ही असर हो कि मैं दनादन पास हो जाता हूं और इतने अच्छे नंबरों से।

0: अब के भाई साहब बहुत कुछ नरम पड़ गए थे। कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरज से काम लिया। शायद वो खुद समझने लगे थे कि मुझे डांटने का अधिकार उन्हें नहीं रहा, या रहा तो बहुत कम। मेरी स्वच्छंदता भी बढ़ी, मैं उनकी सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगा। मुझे कुछ ऐसी धारणा हुई कि मैं तो पास ही हो जाऊंगा, पढ़ूं या न पढ़ूं मेरी तकदीर बलवान है, इसलिए भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था वो भी बंद हुआ। मुझे कनकौवे उड़ाने का नया शौक पैदा हो गया था और अब सारा समय पतंगबाजी की ही भेंट होता था। फिर भी मैं भाई साहब का अदब करता था और उनकी नजर बचाकर कनकौवे उड़ाता था। मांझा देना, कन्ने बांधना, पतंग टूर्नामेंट की तैयारियां आदि समस्याएं अब गुप्त रूप से हल की जाती थीं। भाई साहब को यह संदेह न करने देना चाहता था कि उनका सम्मान और लिहाज मेरी नजरों में कम हो गया है। एक दिन संध्या समय हॉस्टल से दूर मैं कनकौवा लूटने बेतहाशा दौड़ रहा था। आंखें आसमान की ओर थीं और मन उस आकाशगामी पथिक की ओर जो मंद गति से झूमता पतन की ओर चला जा रहा था, मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने जा रही हो। बालकों की एक पूरी सेना लग्गे और झड़दार बांस लिए उनका स्वागत करने को दौड़ी आ रही थी। किसी को अपने आगे पीछे की खबर न थी, सभी मानो उस पतंग के साथ ही आकाश में उड़ रहे थे। जहां सब कुछ समतल है, न मोटर कारें हैं, न ट्राम, न गाड़ियां, सहसा भाई साहब से मेरी मुठभेड़ हो गई, जो शायद बाजार से लौट रहे थे। उन्होंने वहीं मेरा हाथ पकड़ लिया और उग्र भाव से बोले,
1: अरे रे रे, इन बाजारी लाउंडों के साथ ढेले के कनकौवे के लिए दौड़ते तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें इसका कुछ भी लिहाज नहीं कि अब नीची जमात में नहीं हो, बल्कि आठवीं जमात में आ गए हो और मुझसे केवल एक दर्जा नीचे हो। आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल रखना चाहिए। एक जमाना था कि लोग आठवां दर्जा पास करके नायब तहसीलदार हो जाते थे। मैं कितने ही मिलचियों को जानता हूं जो अव्वल दर्जे के डिप्टी मजिस्ट्रेट या सुप्रिंटेंडेंट है। कितने ही आठवीं जमात वाले हमारे लीडर और समाचार पत्रों के संपादक हैं। बड़े बड़े विद्वान उनकी मातहती में काम करते हैं और तुम उसी आठवीं दर्जे में आकर बाजारी लौंडों के साथ कनकौओं के लिए दौड़ रहे हो। मुझे तुम्हारी कम अकली पर दुख होता है। तुम जहीन हो, इसमें शक नहीं, लेकिन वो जहन किस काम का जो हमारे आत्मगौरव की हत्या कर डाले? तुम अपने दिल में समझते होगे, मैं भाई साहब से महज एक दर्जा नीचे हूं और अब उन्हें मुझे कुछ कहने का हक नहीं है। लेकिन ये तुम्हारी गलती है, मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूं और चाहे आज तुम मेरी जमात में आ जाओ और परीक्षकों का यही हाल है तो निसंदेह अगले साल तुम मेरे समकक्ष हो जाओगे। शायद 1 साल बाद तुम मुझसे आगे निकल जाओ, लेकिन मुझ में और तुम में जो 5 साल का अंतर है उसे तुम क्या, खुदा भी नहीं मिटा सकता। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूं और हमेशा रहूंगा। मुझे दुनिया का और जिंदगी का तजर्बा है। चाहे तुम एमए, डीफिल और डीलिट ही क्यों ना हो जाओ, समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती। हमारी अम्मा ने कोई दर्जा पास नहीं किया और दादा भी शायद 5वीं जमात के आगे नहीं पढ़ पाए, लेकिन हम दोनों चाहे दुनिया की विद्या पढ़ लें, अम्मा और दादा को हमें समझाने और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा। केवल इसलिए नहीं कि वो हमारे जन्मदाता हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें दुनिया का हमसे ज्यादा तजर्बा है और रहेगा। अमेरिका में किस तरह की राज्य व्यवस्था है और आठवें हेनरी ने कितने विवाह किए और आकाश में कितने नक्षत्र हैं, ये बातें चाहे उन्हें न मालूम हो, लेकिन हजारों ऐसी बातें हैं जिनका ज्ञान उन्हें हमसे और तुमसे ज्यादा है। देव ना करे आज मैं बीमार हो जाऊं तो तुम्हारे हाथ पांव फूल जाएंगे। दादा को तार देने के सिवा तुम्हें कुछ ना सूझेगा, लेकिन तुम्हारी जगह दादा हो तो किसी को तार ना दे, न घबराएं, न बदहवास हो, पहले खुद मरज पहचान कर इलाज करेंगे, उसमें सफल ना हुए तो किसी डॉक्टर को बुलाएंगे। बीमारी तो खैर बड़ी चीज है, हम तुम तो इतना भी नहीं जानते कि महीने भर का महीने भर कैसे चले। जो दादा भेजते हैं उसे हम 20-22 तक खर्च कर डालते हैं और पैसे पैसे को मोहताज हो जाते हैं। नाश्ता बंद हो जाता है, धोबी और नाई से मुंह चुराने लगते हैं, लेकिन आज हम और तुम खर्च कर रहे हैं उससे आधे में दादा ने अपनी उम्र का बड़ा भाग इज्जत और नेक नामी के साथ कमाया है और कुटुंब का पालन किया, जिसमें सब मिलाकर 9 आदमी थे। अपने हेडमास्टर साहब को ही देखो, एमए है कि नहीं, यहाँ के एमए नहीं ऑक्सफोर्ड के, 1,000 रुपया पाते हैं, लेकिन उनके घर इंतजाम करता कौन है? उनकी बूढ़ी माँ। हेडमास्टर साहब की डिग्री यहाँ बेकार हो गई, पहले खुद घर का इंतजाम करते थे, खर्चा पूरा ना पड़ता, कर्जदार रहते थे। जब से उनकी माताजी ने प्रबंध अपने हाथ में लिया है, जैसे घर में लक्ष्मी आ गई हो। तो भाईजान, ये जरूर दिल से निकाल डालो कि तुम मेरे समीप आ गए हो और स्वतंत्र हो। मेरे देखते तुम बेराह नहीं चल पाओगे, अगर तुम यो ना मानोगे तो मैं थप्पड़ का भी प्रयोग कर सकता हूं। मैं जानता हूं कि तुम्हें मेरी बातें जहर लग रही हैं।
0: मैं उनकी इस नई युक्ति से नतमस्तक हो गया। मुझे आज सचमुच अपनी लघुता का अनुभव हुआ और भाई साहब के प्रति मेरे मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई। मैंने सजल आंखों से कहा, जी हरगिज नहीं, आप जो कुछ फरमा रहे हैं वो बिल्कुल सच है और आपको कहने का अधिकार है। भाई साहब ने मुझे गले लगा लिया और बोले,
1: कनकव्वे उड़ाने को मन नहीं करता, मेरा जी भी लल जाता है, लेकिन क्या करूं, खुद बेराह चलूं तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूं? ये कर्तव्य भी तो मेरे सिर पर है।
0: संयोग से उसी वक्त एक कटा हुआ कनकौवा हमारे ऊपर से गुजरा। उसकी डोर लटक रही थी, लड़कों का एक झुंड पीछे दौड़ा चला आता था। भाई साहब तो लंबे हैं ही, उछलकर उसकी डोर पकड़ ली और बेतहाशा हॉस्टल की तरफ दौड़े। मैं पीछे पीछे दौड़ रहा था।
2: कथा सुधा में आज आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानी बड़े भाई साहब। आज आपने सुना इस कहानी का दूसरा भाग। पात्र परिचय इस प्रकार है, छोटे भाई जयंत पात्रिकर, बड़े भाई साहब जी श्याम, संकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी, प्रस्तुति अनुश्री पाठक।

0: नेहा, अभी हम सुन रहे थे कथा सुता में बड़े भाई साहब कहानी का दूसरा भाग, और आज विश्व अल्जाइमर दिवस है
1: जी।
0: तो हमारे सुनने वाले भी बताएं कि क्या उनके परिवार में ऐसे कोई लोग हैं जो चीजों को भूल जाते हैं और वो उनकी इस चीज को देखा अनदेखा कर रहे हैं। हमारी सखियां अक्सर कई बार अपनी चीजों के साथ में बहुत चीजों को हल्के में लेती हैं, और जब हल्के में हम चीजों को लेते हैं तो आगे चलकर वो कोई बड़ी गंभीर समस्या हो सकती है। तो अपने अनुभव हमारे साथ साझा कर सकते हैं। फिलहाल हम सुन लें एक गीत
1: जी।

नेहा, अभी हमने सुना सीआईडी फिल्म का गाना जिसमें आवाजें थी आशा भोसले, मोहम्मद रफी और शमशाद बेगम की, और घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि कार्यक्रम में अभी समय है एक छोटे से अंतराल का।

0: देखिए कि ब्रेन स्ट्रोक ज्यादा कॉमन है या ब्रेन हेमरेज। 100 में से 85% अभी भी ऐसे हैं जो ब्रेन स्ट्रोक होते हैं। 15% पेशेंट को एक्चुअली ब्रेन हेमरेज होता है।
1: कैसे पहचाने ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण?
0: ब्रेन के राइट साइड में ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है तो पेशेंट का धीरे धीरे बायां हाथ पैर जो है वो काम करना बंद कर देता है।
1: सिर दर्द कब बन जाता है जिंदगी का दर्द? इन तमाम सवालों से जुड़ी जानकारियां देंगे न्यूरो सर्जन डॉक्टर अजीत मिश्र।
0: ब्रेन का एक ऐसा हिस्सा जो धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू हो गया, तो जहाँ से पैर की नस ब्रेन में शुरू होने वाली है, अगर वो ब्रेन ही आपका श्रिंक होते जा रहे हैं तो उसमें से धीरे धीरे ट्रेमर्स आने लगते हैं।
1: सुनिए सेहतनामा 21 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा और कार्यक्रम चल रहा है सखी सहेली।
3: और हमें तो याद है ये सारी चीजें, और हमें ये भी याद है कि आज विश्व अल्जाइमर दिवस है और हर साल 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है। और इसका उद्देश्य है कि अल्जाइमर और डिमेंशिया जैसी जो भूलने की बीमारियां हैं इनके बारे में लोगों को जागरूक करें और इससे जुड़े जो डर हैं उन्हें खत्म किया जाए।
2: बिल्कुल, कोई भी बीमारी या समस्या उसके नाम से ना डर सबसे पहले आ जाता है। तो ये जागरूक हो जाएं लोग और उसे डरे नहीं, उसका उपचार कैसे करना है और इस चीज से हम कैसे बच सकते हैं इसके बारे में जानना बहुत जरूरी होती है। और 1994 में इस दिन की शुरुआत हो गई थी। अल्जाइमर डिजीज इंटरनेशनल यानी कि ADI नामक एक संस्था है, उसने अपनी 10वीं वर्षगांठ पर पहली बार इस दिन को मनाया। 2012 से पूरे सितंबर महीने को ही वर्ल्ड अल्जाइमर मंथ के रूप में भी हम मनाते हैं।
3: हाँ, और अल्जाइमर या डिमेंशिया का सबसे आम प्रकार है अल्जाइमर जो है। WHO के अनुसार दुनिया में करीब 55 मिलियन से ज्यादा लोग डिमेंशिया से पीड़ित हैं और इसमें लगभग 60-70% मामले अल्जाइमर के ही हैं। और एक बात के तौर पर अगर हम बताएं तो हर साल लगभग 1 करोड़ नए मामले इसके सामने आते हैं। और इस समस्या को सामने आने पर दिमाग में बीटा एमिलॉइड प्रोटीन जमा होने से दिमाग की कोशिकाएं नष्ट होने लगती हैं और इसका ही नतीजा होता है कि याददाश्त और सोचने समझने की जो क्षमता है वो धीरे धीरे कम होने लगती है।
2: बिल्कुल, और ये महिलाओं के साथ में मैंने भी जो हमारे जो मिलने जुलने वाले हैं, अड़ोसी पड़ोसी हैं, घर की ही महिलाएं हैं, कईयों से सुना है कि धीरे धीरे ना चीजें वो भूलने लगती हैं, लेकिन इन चीजों को अगर हल्के में ले लेंगी तो वो समस्या बड़ा रूप ना ले। इसीलिए इसके बारे में चेत जाना पहले से जरूरी होता है। और जब हम ये दिन मनाते हैं जागरूकता के लिए तो हर साल कोई ना कोई एक थीम भी होती है और इस साल जो थीम रखी गई है वो है द अर्लियर यू नो द मोर यू कैन डू डिमेंशिया डायग्नोस मैटर्स। इसका मतलब है कि जितना जल्दी आपको पता लगेगा उतना जल्दी आप कर पाएंगे। और ये थीम नेहा इसलिए भी रखी गई है क्योंकि इस साल इस बात पर फोकस किया जा रहा है कि समस्या का निदान जल्दी होने पर इसका इलाज, देखभाल और सहयोग सही समय पर जो भी पीड़ित है उनको मिल सके।
3: और वाकई अगर किसी शुरुआती लक्षण में ही जब हम पहचान लेते हैं

0: तो जल्दी आसानी से हम उसका इलाज भी करवा सकते हैं। तो जैसे ही कोई शुरुआती लक्षण दिखाई दे तो नजरअंदाज न करें, जैसे कि हाल में ही बातें बार बार आप भूलने की आपको ऐसी आदत नजर आ रही, रोज के काम करने में भी अगर दिक्कत आने लगे, समय और जगह को लेकर अगर भ्रम होने लगे, या बोलने में सही शब्द आपको समझ नहीं आ रहे कि क्या बोलना चाहते हैं, या आपका मूड और व्यवहार अचानक बदल रहा है, तो इस तरह की जो लक्षण है, मतलब आमतौर पर हम छोटी मोटी चीजें भूलते हैं जो कि आम है, लेकिन कुछ ऐसा भूल जाना कि आपने कभी तुरंत ही वो किया है,
1: yes,
0: किस जगह हैं आप, अगर ऐसा आप हो रहा है तो फिर आपको इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है।
1: और कई बार किसी चिर परिचित को हम जानते हैं लेकिन उसका चेहरा याद है, हम उसे पुकारना चाहते हैं लेकिन उसका नाम हमें याद नहीं आ रहा होता है। हमें कोई चीज किसी से मंगवानी है कि भाई वो चीज हमें लाकर दे दो, लेकिन उस चीज का हमें नाम याद नहीं आता है। आपको अगर पेन मंगाना है, कोई किताब मंगानी है, तो आपके सामने उसकी छवि पूरी है लेकिन आप सामने वाले को बयान नहीं कर पाते हैं क्योंकि उसका नाम आपके जहन में नहीं होता। तो यही इस तरह के लक्षण होते हैं। और भारत में हम देखें तो लगभग 53 लाख लोग डिमेंशिया से पीड़ित हैं, और पहले गांवों में इसे बुढ़ापे की समस्या समझकर लोग नजरअंदाज करते थे, समय है, उम्र बढ़ रहा है, तो ये चीजें होना लाजमी है, लेकिन इस बारे में लोग धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं। और वैसे तो कहना चाहिए कि पूरा कोई पक्का इलाज है नहीं इस समस्या का, लेकिन स्वस्थ जीवन शैली अगर हम अपनाते हैं तो इसके जोखिम को हम धीरे धीरे कम कर सकते हैं।
0: हाँ, जैसे कि हम रोजाना अगर व्यायाम करते हैं या योग करते हैं, संतुलित आहार लेते हैं, धूम्रपान और मदिरापान से दूर होते हैं, सामाजिक मेलजोल ज्यादा बढ़ाते हैं, दिमागी कसरत की चीजें होती है जैसे किताबें पढ़ना या वर्ग पहेलियां जो आती हैं, अलग अलग तरह की पहेलियां हल करना, तो ये सारे उपाय हम कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त हम कर सकते हैं, अगर ब्लड प्रेशर की शिकायत है या डायबिटीज है या कोलेस्ट्रॉल है तो इन्हें कंट्रोल में रखने की भी हम अगर कोशिश करते हैं तो इससे भी बहुत फायदा होता है। साथ ही अगर हम अच्छी नींद लेते हैं और अपने तनाव को कम करते हैं तो ये भी हमारे लिए फायदेमंद होता है।
1: बिल्कुल, और हम कह सकते हैं कि ये जो दिन हम मना रहे हैं इसका संदेश भी यही है कि भूलने को उम्र का कोई सामान्य हिस्सा नहीं समझे कि भाई उम्र बढ़ रही है तो ये समस्या आनी ही है, ऐसा नहीं है। इसकी जल्दी अगर पहचान कर लेते हैं, सही जानकारी हो इसकी, तो परिवार का प्यार अगर हमें मिलता है तो वही इसकी सबसे बड़ी दवा है।
0: बिल्कुल, हमारे एक साथी ने लिखा है कि विश्व अल्जाइमर दिवस की शुरुआत 21 सितंबर 1994 को एडिनबर्ग में अल्जाइमर डिजीज इंटरनेशनल ADI की 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर की गई थी। और आगे उन्होंने बताया कि नामकरण इस मानसिक बीमारी का नाम जर्मन मनोचिकित्सक और न्यूरोपैथोलॉजिस्ट एलोइस अल्जाइमर के नाम पर रखा गया, जिन्होंने 1901 में पहली बार एक महिला में इस विकार की खोज की थी।
1: इसी तरह से एक और संदेश हमारे पास आया है। इस संदेश में लिखा गया है कि आज अंतर्राष्ट्रीय अच्छा ये तो शांति दिवस के बारे में, तो जब शांति की बात करेंगे तब इसके बारे में पढ़ेंगे।
0: बिल्कुल, अभी तो हमने अल्जाइमर के बारे में बात की, और भूलने की जो समस्या है अक्सर तब भी आने लगती है जब हम ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं।
1: तो देखियो ना, मैं भी भूल गई कि हम बात कर रहे थे अल्जाइमर डे के बारे में और शांति दिवस का संदेश में पहले पढ़ने लगी, तो ये भूल ना हो पहले गाना सुन लेते हैं।
0: बिल्कुल।

0: तो भाई बहुत शांति है ना अभी स्टूडियो में समय।
1: हाँ, और ये गाना अगर ऐसे गाने सुने तो मन में कितनी शांति लगती भी है, और एक अच्छा मौका भी है शांति का, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस है आज, और 21 सितंबर को हर साल पूरी दुनिया में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा समर्पित ये दिन है, जिसका एक ही संदेश है कि युद्ध को नहीं शांति को चुनो।
0: बिल्कुल सही बात है।
1: और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव का कहना है कि शांति एक बेहतर भविष्य के लिए सबसे शक्तिशाली ताकत है, और ये हमारी पहुंच में है अगर हम इसे चुनते हैं तब।
0: बिल्कुल, यानी कि अगर हम क्रोध नफरत को चुनना चाहें तो उसे भी चुन सकते हैं, लेकिन अगर एक बेटर और बेहतर ऑप्शन की तरफ हम जाते हैं, एक अच्छा विकल्प हम चुनते हैं, तो वो शांति ही हो सकता है। और 1981 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिवस की स्थापना की। 2001 में महासभा ने सर्वसम्मति से 21 सितंबर को वैश्विक युद्ध विराम और अहिंसा के दिन के रूप में इसे घोषित किया। इस दिन सभी देशों और वहां के जो रहने वाले लोग हैं उनसे हम ये अपील करते हैं कि 24 घंटों के लिए ही सही, लेकिन इस चीज को, यानी कि जो हिंसा है उसे रोकने की कोशिश वो जरूर करें, अपने आप से जो कोशिश उनसे हो सकती है।
1: हाँ, और जैसा कि हमने बताया कि हर वर्ष कोई थीम होती है हर दिवस की, तो इस वर्ष की शांति दिवस की थीम है एक्ट नाउ फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड, यानी कि अगर आपको शांति प्रिय एक विश्व चाहिए तो उसके लिए अभी प्रयासरत होना होगा। और ये थीम याद दिलाती है कि शांति अपने आप नहीं आती, इससे बनाना पड़ता है साहस, समझौते और कार्रवाई से।
0: और ये कार्रवाई भी हमें ही करनी होती है, कोई और आके काम नहीं करेगा। और शांति का मतलब केवल युद्ध को रोकना या युद्ध नहीं करना ये नहीं होता। इसका अर्थ है कि न्याय, समानता, मानवों के अधिकार, सबका सम्मान, ये सब चीजें होनी जरूरी है। और इसीलिए विश्व शांति का महत्व, इसको अगर हम समझेंगे तो सबका सहयोग और सबका योगदान होना बहुत ही जरूरी है।
1: बिल्कुल, क्योंकि अगर हम सब मिलकर ये काम नहीं करेंगे, कोई भी काम अगर सब मिलकर करते हैं तो ही सफलता हासिल हो सकती है। और संयुक्त राष्ट्र के अनुसार विकास और शांति एक दूसरे से जुड़े हैं। दुनिया के 10 सबसे कम विकसित देशों में से ज्यादातर किसी न किसी संघर्ष से जूझ रहे हैं। तो जहां शांति होती है वहां परिवार जुड़ते हैं, समुदाय फिर से बनते हैं और बच्चे पढ़ लिख पाते हैं, खेल पाते हैं।
0: और जब बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे खेलेंगे तभी तो उस देश का भविष्य जो है वो उज्ज्वल बनेगा
1: जी।
0: और इस दिन जो है, यानी कि आज की हम बात कर रहे हैं विश्व शांति दिवस की, अंतर्राष्ट्रीय विश्व शांति दिवस की, तो इस दिन न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र का जो मुख्यालय है वहां पर पीस बेल, यानी कि शांति का घंटा, वो बजाया जाता है। और ये घंटा दुनिया भर के लोगों द्वारा जो दान किए गए सिक्के हैं या पदक हैं उनसे बनाया गया है। इसके अलावा दुनिया भर

0: में शांति दिवस पर शांति मार्च, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, स्कूलों में वाद विवाद प्रतियोगिताएं होती हैं, अंतर धार्मिक संवाद आयोजित किए जाते हैं और बहुत सारे लोग तो इस तरह से जो सफेद कबूतर होते हैं हाँ, शांति का प्रतीक माना जाता है उन्हें भी उड़ाते हैं।
1: और संयुक्त राष्ट्र का मानना है कि शांति हम सब का काम है, नफरत से भरे शब्द न बोलें, अपने आसपास सम्मान की भाषा बोलें, सबको समान भाव से देखें, फर्जी खबरें जो होती हैं उन्हें फैलाने से रोकें। और शांति का मतलब कोई बड़ी बड़ी बातें करना नहीं है चंचल जी, क्योंकि छोटे छोटे रोज के अगर हम कदम उठाते हैं तो उससे ही हम शांति स्थापित कर सकते हैं। जैसे दूसरे को सुन लें, दूसरे को समझें, और कोई हिंसा अगर करता भी तो उसका जवाब हिंसा से न दें, उन्हें समझने की कोशिश करें, समझाएं किसी तरह से, अगर वो मान जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है।
0: तो आपने कहा दूसरों को सुने समझें, तो भाई हमारे श्रोता क्या कह रहे हैं उनकी बात भी सुन लेते हैं। उनका कहना है कि आज अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस है और लगता है इसीलिए मेरा ऑफिस जाने से पहले तक सखी सहेली यानी मेरी धर्म पत्नी शांति बनाए रखी हैं और मेरी क्लास लेते हुए लेक्चर उन्होंने नहीं दिया है। काश हर रोज अलग अलग शांति दिवस हो।
1: हमें तो लगता है कि इन्होंने भी हमारी सखी को तंग करने का कुछ आज प्रयास नहीं किया होगा
0: जी।
1: इसी वजह से ये शांति बनी हुई है, क्योंकि जब कहते हैं कि एक कार क्रिया की प्रतिक्रिया होती है ना, तो वो प्रतिक्रिया नहीं आई क्योंकि क्रिया शायद नहीं हुई है आज
0: जी।
1: तो ऐसा वो भी बनाए रखे शांति, ऐसा हम कहते हैं। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि सखी सहेली कार्यक्रम के रोचक विषयों को पढ़ा तो पता चला अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस है, मगर हमारे घर में आज सुबह से ही बर्तन बजने शुरू हो गए। देखिए प्रतिक्रिया हो रही है क्रिया की। और वो कह रहे हैं कि मेरी धर्मपत्नी और मेरी सुबह सुबह ही दूध लेने जाने की बहस शुरू हो गई। मैं मस्त था, सुरीला सफर कार्यक्रम के संभावित शब्दों से गीत सोचने में बड़ा व्यस्त था। घर में दूध न होने के कारण चाय नाश्ते में देरी हो रही थी। शांति दिवस के मौके पर हम दोनों पति पत्नी ने घर में वो अशांति फैलाई कि बच्चे भी देख देख कर हंस रहे थे। बच्चों को हंसता देख मैंने पत्नी के सामने सरेंडर किया, डोलची उठाई और चुपचाप से दूध लेने चला गया। दूध आने के बाद फिर सबने हंसी खुशी चाय नाश्ता किया और अशांत हुआ घर का वातावरण एक बार फिर से शांति वाले माहौल में तब्दील हो गया। तो आप सबको हमारी ओर से एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की शुभकामनाएं और ढेरों बधाई।
0: हम भी सबको शुभकामनाएं देते हैं और ऐसा हंसी खुशी का वातावरण सभी के घर में बना रहे। सुनते हैं ये गीत।

0: चंचल जी, मैं भी ये सोच रही थी कमेंट पढ़ते हुए कि हमारे साथी ने कहा कि वो दूध की वजह से जो लड़ाई हुई उसमें उन्होंने देखिए हमारा नाम भी साथ में लिया। उन्होंने कहा कि विविध भारती की जो सुरीला सफर की जो पोस्ट आई थी उसकी वजह से वो गाने सोच रहे थे और नहीं जा रहे थे ना, तो हम तो ये कह रहे कि रास्ते में भी सोचते सोचते जा सकते थे।
1: बिल्कुल सही बात है, आप जब जा रहे हैं दूध लेने तो रास्ते भर उन शब्दों को अपने जहन में रखते हुए जाइए और जब आ जाएंगे तो इत्मीनान से वो सारे गाने लिखकर आप पोस्ट पर डाल सकते हैं।
0: हाँ।
1: चलिए फिलहाल हम बात करते हैं ल्योदुर चमन की, जो कि एक कश्मीरी व्यंजन है।
0: हाँ।
1: और ल्योदुर चमन का मतलब होता है ल्योदुर मतलब होता है पीला और चमन का मतलब होता है पनीर। और इस रेसिपी की खास बात यही होती है कि इसमें प्याज लहसुन टमाटर हरी मिर्च इन चीजों का इस्तेमाल नहीं किया जाता, इनकी बहुत ही साफ सुथरी, कहते हैं ना कि मीठी सी रेसिपी होगी जिसमें तीखापन ज्यादा नहीं
0: कुछ
1: होता।
0: भी नहीं डालते मसाले, कुछ नहीं डाल रही, क्या बात है भाई।
1: इसमें जो ग्रेवी है वो दूध सौंफ सौंठ इस तरह के मसालों से बनाई जाती है। तो सामग्री इसके लिए चाहिए 300 से 400 ग्राम मोटे चौकोर टुकड़ों में कटा हुआ पनीर और 1.5 से 2 कप फुल फैट वाला दूध, यानी कि जिसमें मलाई होती है वैसा वाला दूध। सरसों का तेल चाहिए 3 से 4 बड़े चम्मच, वो चाहिए हमें पनीर तलने के लिए और ग्रेवी के लिए। हल्दी पाउडर 1 छोटा चम्मच, सौंफ पाउडर 2 छोटे चम्मच, सौंठ पाउडर 1 छोटा चम्मच, हींग चाहिए 1/4 छोटा सा चम्मच, स्याह जीरा चाहिए 1/2 छोटा चम्मच, खड़े मसाले में 1 दालचीनी का टुकड़ा और 2 हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 2-3 लौंग और नमक स्वाद के अनुसार। अब पनीर को पानी में उबालने और भिगोने के लिए पानी चाहिए, पनीर को उबालने के लिए और भिगोने के लिए थोड़ी सी कसूरी मेथी चाहिए, यानी कि 1 छोटा चम्मच। अब इसे बनाने के लिए पनीर को तैयार करना है। 1 बड़े बर्तन में पानी को उबालें, उसमें 1/2 चम्मच हल्दी और थोड़ा सा नमक डालें। पनीर के टुकड़ों को इसमें डालकर 2 मिनट के लिए छोड़ दें, फिर पानी से निकालकर सुखा लेना है। अब एक कढ़ाई में सरसों का तेल तब तक गर्म करना जब तक उसमें से अच्छा सा धुआं ना निकलने लगे। आंच को धीमा करके पनीर के टुकड़ों को दोनों तरफ से हल्का सुनहरा होने तक तल लेना है। तले हुए पनीर के टुकड़ों को कढ़ाई से निकालकर तुरंत एक बर्तन में जिसमें गुनगुना नमक वाला पानी हो उसमें डाल देना है। ऐसा करने से पनीर रबड़ की तरह खिंचा हुआ नहीं होता बल्कि नरम और स्पंजी रहता है। और ग्रेवी का तड़का तैयार करने के लिए कढ़ाई में बचे जो तेल बच गया है उसी को थोड़ा सा गर्म करना है और इसमें अगर कम लगे तो आप तेल और छोड़ दीजिए। और इसमें जीरा हींग दालचीनी लौंग हरी इलायची बड़ी इलायची ये सारे मसाले एक साथ डाल देने, कुछ सेकंड जब ये मसाले चटकने लगेंगे और इसमें इनकी खुशबू आने लगेगी तब आंच को धीमा करना है, गैस बंद कर देनी है। इसमें हल्दी पाउडर सौंठ पाउडर और सौंफ पाउडर डालना है, सूखे मसाले ना जलें। इसके लिए तुरंत इसमें 2 से 3 चम्मच पानी भी डाल देना है
0: जी।
1: दूध को अब इसमें थोड़ा सा मसाले डालने के बाद में दूध डालना है और जब दूध डालेंगे तो कलछी से लगातार चलाते रहना ताकि दूध वो फट ना जाए। और जब दूध में अच्छा सा उबाल आने लगे तो स्वाद अनुसार नमक डालना है, जो भीगा हुआ पनीर था उसको हाथों से निचोड़ कर इस उबलती हुई ग्रेवी में डाल देना है और कढ़ाई को ढक देना है, धीमी आंच पर 10 से 12 मिनट तक इसे पकने देना है। पनीर जब सभी ग्रेवी के साथ में सारे स्वाद को सोख लेगा और ग्रेवी गाढ़ी हो जाएगी, घी या तेल जो भी है वो सतह पर तैलने लगेगा, तो ऊपर से 1 चम्मच हल्का सा है तो घी डाल देना है या मलाई डाल सकते हैं आप और थोड़ी सी कसूरी मेथी डालकर फिर गैस बंद कर दीजिए और गर्मा गर्म ल्योदुर चमन जो है वो तैयार हो जाएगा। इस तरह से
0: भीनी भीनी से खुशबू रहेगी इसमें ऐसा लगता है ना। और एक हाक साग के बारे में भी आपने बताया था, तो हाक साग को अगर हम बताएं तो कश्मीर का सबसे पसंदीदा और रोजमर्रा के खाने में बनने वाला पारंपरिक व्यंजन है। तो कश्मीरी कोलार्ड ग्रीन्स या हरी पत्तियों का एक साग होता है जो वहां मिलता है और इसके बहुत ही कम मसालों के साथ इसे भी पकाया जाता है ताकि साग का जो स्वाद है वो बना रहे। इसके लिए हाक की पत्तियां, सरसों का तेल, हींग, सूखी लाल मिर्च और नमक, बस इतना ही चाहिए। और इसमें लहसुन और प्याज का इस्तेमाल जैसे कि आपने कहा इसमें भी नहीं होता है। ये इसका स्वाद हल्का तीखा और बेहद ताजा होता है, तो आमतौर पर इसमें उबले हुए चावल के साथ इसे परोसते हैं और ऐसे खाया जाता है इसे। लेकिन इसको मतलब बस सब्जियों को इसी तरह से बनाया जाता है, सब्जी को आप हल्का सा तोड़कर या काटकर आप इस तरह से छोंक दीजिए, छोटे जो थोड़ी सी जो हमने सामग्री ली है उसमें आप इसको छोंक दीजिए और बस वो बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। और बस ऐसे कह सकते हैं कि पहले वो जो पनीर की सब्जी है जिसका नाम मैं तो भूल चुकी हूँ,
1: ल्योदुर चमन।

0: चमन और हाक साग बड़ी आसानी से बन जाता है। ये भी जैसे हम भाजी बनाते हैं ना, जो ताजी सब्जियां जिस तरह से थोड़े से मसालों के साथ में ऐसा डाल के, उसी तरह से इसे पका लिया जाता है। और बस इन सब के साथ में चावल बनाइए और खाइए, आनंद लीजिए।
1: बिल्कुल, आप रोटी के साथ भी खा सकती हैं और गर्मा गर्मी सब्जियां बड़ी अच्छी लगती हैं। और क्या होता है ना कि कई बार बहुत तेल मसाले वाला या लहसुन प्याज का कुछ खाने का मन ना हो, तो इस तरह की हल्की फुल्की सब्जियां सभी बनाकर खा सकते हैं। और भाई खुशबू तो फैल रही है जायके की, लेकिन मुझे लग रहा है कि जो संगीत की मीठी मीठी सुगंध है, खुशबू है, वो भी फैल जाए।
0: बिल्कुल।

0: चंचल जी, हमारे एक साथी ने लिखा कि उन्हें मेरे पति को भूलने की बीमारी की शुरुआत हो गई है। डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा अभी कुछ ज्यादा नहीं है, बढ़ती उम्र में होता है, कुछ एक्सरसाइज और रोजमर्रा के काम नियम करने से बताया है। मैं भी कुछ चीजें रखकर भूल जाती हूँ, किसी समय याद आ जाता है, किसी का नाम या जगह के नाम भी वो भूलती हैं, ऐसा कह रही हैं।
1: तो बस आप ख्याल पर उपचार करिए, ध्यान रखिए अपना। और अभी कार्यक्रम का समय पूरा हो चला है तो हम लेते हैं इजाजत। सभी को चंचल वर्मा
0: और नेहा शर्मा का नमस्कार।
1: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।